0: जिया, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ।
1: नहीं यार,
0: नजर जिया, I want to tell you something.
2: Hi.
0: Hi.
2: I want to tell you something. Me too.
0: तुम बोलो।
2: I'm getting married. In 2 days. लड़का आ रहा है, बहुत अच्छा लड़का है। I know सब कुछ बहुत जल्दी है।
0: नहीं यार, कहीं नहीं। Congratulations यार।
2: Thanks। तो तुम आ रहे हो ना?
0: मुझे जरूरी काम है यार, मैं नहीं आ पाऊंगा।
2: मुझे तो यही want you to come।
0: यार, I really wish I could।
2: तुम्हें मेरी कसम, चाहे

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल सनी से प्रोग्रामस मंशु तो है माय बरुत इस्तकबाल मर्ज कश्मीर छ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हुंद अख सूब यत सूबे कश्मीर वनाच तो दोयम सूब गा सूबे जम्मू कश्मीर छ पहाड़ो ये तेबसिते खैने मंजरट मंस तो तवेचिस वादी यानी घाटी तिवनान वादी कश्मीर छ जमीन पेट संत स्वर्ग बसित तो वादिये गुलपोश तिशस वनान छठे पौपर छ पोश वनन मत करान तो वीर केम छक पादन मीठ दिवान बोन शेजार छ पहलन कुमलन के हो मेहनत कशन थकित सेनित गुम शेहलावान तो चक शेलत पेवान दोहले पोश बागन मज गुलो बुलबुल आख किस लोल बगरान तो कुटले लोल रेव करान तो रोत लिए जोन गाशस मज गुहन पेट पहलन हंस मोरली कनन कछान कशीर हंस मौसी की छु अ खास मुकाम हासिल अतिक साजंदर ये ले साज वायान छे तो बासान छु जे यंद्राज ने दरबार एक साजंदर छे योर वचमित ते अप्सराय छे माज कशीर हुंद दिल रंजनावान बच नगम छे शब्दान तो लोक छे वलसन असीवान जैने ते जैन छे रेव करान यावुन छु सो मारान तो लोल एक नगम गेवान नचान ते नचनावान साजंदर छे नोट तुम्बकनर रबाब संतूर सारंग ते हारमोनियम वायान ते कृष्ण गणमातन हिंदन बर्तन पर छु रक्स सप्तान ये ले सोत बादाम वर छे लगान ते रेत काले बागन मंस मल छे लगान अच्छे छकर ते रोफानान ते ये गो फोक म्यूजिक उक कशुरा सूफियान मौसिकी ते छे कृष्ण हंस प्रजनत पदकड़ान स्वर्ण वर्ल छे लुक बर्तन हुंद रंग रथ खारान तो डोल बजावान बजावान छे बांड पत्थर हावान मसलन दर्ज पत्थर गोसैन पत्थर वगर वगर हिमाल नागरहित अकनंदुन हिवन लुक कथन पेट मबनी पत्थर छे बांड पत्थर रूपस मस्ते पेश करने वान तो लुकन लुक कथन हंस अहमियत के बयान इवान करन ये सोरे छे कशुर मिरास युस थोत

बड़ा के शैल बड़ा के मिठा गीत सुनिए नंद गया ही ते अस गल करा दे हे जम्मू प्रदेश दी ते मैं आ तुंदी आरजे नेहा शर्मा ते जदो राजे ने दिखया ते उन्हें फिर उस जगह ही बसाने दा निर्णय ले लेता। उस राजे दा नाम है राजा जी जम्बू लोचन ते उन्हें राजे दे नाम पर इस जुग्गर प्रदेश दा नाम पिया जम्बू, पर उन सरल भाषा च जम्बू बोलते बोलते जम्मू के हुई गया। ते कनेही लगी तुसीं कहानी? ये जिहड़ी कहानी है एक दंत कथाएं च एक है जिहड़े साढ़े बड़े बजुर्ग असीं सुनांदे ने, असीं सुनी दी है अपने जम्मू प्रदेश के नाँ के पिछे का महत्व। तो इस कहानी का प्रभावित होइए मैं ये अपनी कविता भी लिखी ही। सच च गे इसी मंदरे का थां रखते हैं, इतने बड़ी बड़ी चमत्कारी जगहां उनके बड़े बड़े महत्व न, बड़े ही इतने लोग जड़े ने बड़े मिलनसार, बड़े मेल भाव करने रोंदे न। ये जिहड़ा शेर ते बकरी का उदाहरण है वह अज भी कुते ना कुते मेरे डुग्गर प्रदेश विद्यमान है। लोग बिना द्वेष भाव के रोंदे न, कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते ने, बड़े ही प्रेम करने रोंदे न। ते मैं प्रार्थना करनी हाँ ये प्रेम सदा इन्हें सारे लोगों च बने दागे रवे। ते तुस सुनो आज दे एपिसोड दा अगला गीत।

0: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
1: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ले आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ
0: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान RRSP RESP TFSA कॉल करो
1: 6478355294 647 835 5294
2: नाले चोपड़ियां नाले दो दो
3: आहो जी मेनू भी पता नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना यानी दाना मंडी जिते हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी दाला मसाले पिकल्स चौल चाय पत्ती फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
2: डेयरी प्रोडक्ट्स स्नैक्स फ्रेश चिकन बीफ गोट मीट सब कुछ मिलूगा इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे चना भटूरा वेज थाली वेज बिरयानी बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो
3: एक बार आओगे ते बार बार आओगे
2: अनबीटेबल प्राइसेस सेल ऑल टाइम दाना मंडी 1729 Queen Street, East Brampton, Major Intersection, Queen and Bramley.
3: Call Gagan or Gurinder at 905-286-9257.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
5: पर हुन थोनू कार लेन ली रेडी करेंगे. Mortgage the King, Girish Sharma.
6: Residential, commercial, refinancing, debt consolidation, second, third mortgages, private funds.
5: सब ले याद रखो Girish Sharma. Pre-approval ही नहीं, closing तक देंगे पूरा साथ. Dealing with all banks.
6: Call 647-606-8110.
5: और visit sharmamortgages.com.
7: ओ इस साल ता इंश्योरेंस बहुत महंगी होगी. कार ते ऑटो दी इंश्योरेंस दी किश्ता ने सारा बजट हिलाता.
8: ओ जी अमनदीप कौर इंश्योरेंस एडवाइजर दे हुंदिया कोई फिकर नहीं ऐ देन के बेस्ट रेट्स इन द मार्केट विद फुल कवरेज
7: होम ऑटो कमर्शियल ट्रकिंग ते बिजनेस इंश्योरेंस ले कॉल करो इंश्योरेंस एडवाइजर अमनदीप कौर होरानो एट 416-618-2761 416-618-2761
9: पाजी आज घरे तंदूरी बनाओ पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना ओ घरे नहीं बन पाउना
10: हाय गाइस एंजॉय करो तंदूरी बॉयज वेज नॉन वेज स्वादले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज
11: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट पार्ट जागो अते वेडिंग ले आज ही कैटरिंग बुक करो 905-956-2111 905-451-9200 सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस
12: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਗਨਦੀਪ ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਰਾਉਂਡ

0: अपनी वीजे री सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
3: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: जेएन गैरी नो
1: 9054595533
0: 9054595533
1: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
2: टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश कर देने पंजाबी विरसा 2026 टोरंटो शो सैटरडे 25 जुलाई नो थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: लगातार काफी पट्टे पत्र जिस तक पंजाब की सियासत और पिछले पहुंच चुकी है जो वोटा ने कुछ महीने बाद भगवंत मान सरकार चीजा पाई पैण दो ढाई साल काफी रिवाज बढ़िया आ कि भगवंत जिथे जाते ने उथे के जेडे किसान लीडर होंगे ने बेरोजगार होंगे ने जा मुलाजम लीडर है जो जे पुरानी पेंशन मंग रहे हैं उन्होंने उन्होंने घर खुड़ दिता जाता है जा उन्होंने थाने डक दिता जाता है जे कोई चार बंदे कट्ठे करके नेड़े तेरे मजारा कर पहुंच भी आवे तो उन्होंने लाठियां भी बरिया ने अखन्ने चार्ज होया मनरेगा गरीबां ते सो इस करके ये जिहड़ी चीज इस वेले पंजाब च पिछले ढाई साल तो आम आदमी पार्टी के राज प्रबंध विच वधी है ना जिहनूं असीं लाठी चार्ज कहिंदे आ कदे असीं बठिंडे दीआं गल्लां करदे सी बठिंडे जदों बादलां दा राज तो प्रधान गांधी सच्चियां भरांदे सी फिर कैप्टन अमरिंदर अपनी आवाज सुना जाते उत्थे लाठियां पे सुनाम भी लाठियां कई थावां ते लाठियां पै गई ते सरकार सुख दे नाल जिहनूं असीं कहिंदे आम आदमी पार्टी की सरकार है सो प्रभ संधू जी दोहरा दर्द है लोगों का एक लाठियां का दर्द है ते एक लाठियां क्योंकि जिंद कहिंदे हुंदे ना प्रभ संधू जी किते दुश्मन है ना कोई डांग भी मार दे ते ओडा दुख नहीं लगता
1: जी
0: सज्जणां दा दर्द दिंदा है ते आम आदमी पार्टी दा ते ओही दर्द दिंदा है क्योंकि जिस चावां दे नाल लोकां ने सिखाई ते गल उही है जिवें लोकां ने कैप्टन अमरिंदर ते राज विच भी कुट खाधी चरणजीत सिंह रचनी दा जिन्ना क राज रहा चलो मौका नहीं मिलिया ते कुट उत्थे भी थोड़ी बहुती पैंदी रही है बादलां ने भी बथेरे कुटे है ते फिर फर्क की होया जे भाई भगवंत मान दे राज विच ही कुट पैणी है सो इस करके अज पंजाब बंद सीगा ते पंजाब बंद नूं पवां बहुत सारिया जथेबंद समर्थन नहीं दिता परंतु जो मेरे को रिपोर्टा ने कि लोगों ने कितने ना कितने अपनी चुप वाली भी जी है समर्थन के रूप में अपनी चुप्पी भी समर्थन के रूप से प्रगट की और भगवंत मान सरकार इस मसले से नाराजगी प्रगट की है
1: जी बहुत शुक्रिया और रमेश जी तुसी अपना माइक ते या थोड़ा जिहा नैटवर्क नूं जे दुरुस्त करोगे थोड़ी आवाज़ विचों विचों ना कई बार बबलिंग हुंदी आ सो इट्स लाइक काइंड ऑफ नैटवर्क और मे बी माइक तुसी चेक कर लो फिर आप अगली खबर वाल चलते हैं सो 905-673-3337
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किसतों करवांदा यार
3: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
2: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
3: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
3: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते
4: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
3: 416-509-1509
4: और visit insuranceforyou.ca
5: ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਲਈ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬੇਸਮੈਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕੰਕਰੀਟ ਡਰਾਈਵਵੇ ਪੈਟੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 416-902-9293 ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ
1: ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਲ ਵੇ ਰੂਫਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਨਵੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਲ ਵੇ ਰੂਫਰਸ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਫ ਆ ਸ਼ਿੰਗਲ ਰੂਫ ਆ ਮੈਟਰ ਰੂਫ ਆ ਫਲੈਟ ਰੂਫ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਵੇ ਰੂਫਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਟੀ ਏ ਅਤੇ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਊਂਡਰ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 645-0943-647-505-0943 ਆਲਵੇ ਰੂਫਰਸ ਵਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ 905-673-3337 ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਫਟਦੇ ਆ

0: जल्दी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600। हेलो ब्रो, किथे है तू?
1: मैं क्लाइंट नु मिलन जा रहा, सोच रहा सी टिम हॉर्टन्स पे बैठ जाइए।
0: ओ यार, ये तो ओल्ड स्कूल हो गया। हुन ता क्लाइंट मीटिंग्स क्लासी होनिया चाहिदियां ने। नजारा रेस्टोरेंट लेके जाओ ना नु। प्राइवेट बूथ्स ने, फुल प्राइवेसी मिलदी है, फ्री वाईफाई ते लग्जरी एंबियंस। बिजनेस मीटिंग भी सेट हो जांदी है ते खाना भी बहुत वधिया।
1: ओहो, ये ता प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
0: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी। हुने कॉल करो 9054512600, 9054512600।
2: ओ यार, बिजनेस दा माड़ा हाल होया पिया। किन्निया तरकीबां लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
3: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा ता हो ही नहीं।
4: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
5: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
6: रेडियो आवाज,
7: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी ले तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।
8: याद है मैं।

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900 इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586808
1: हाय दिस इज हरप्रीत सिंह फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी

0: वकार खान साहब मेरी लाइन के ऊपर आ गए हैं और वकार खान साहब आपां नूं पता सारे नूं कि रॉजर्स दियां डील्स दे माहिर है और ऑथराइज रॉजर्स दे नाल बहुत लंबे अरसे तो इन्हां दे नाल टाई अप और वकार खान साहब गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप
1: जी थैंक यू सो मच हरजीत जी सब लिसनर नो प्यार भरी सत श्री अकाल
0: जी सर
1: रॉजर्स जी मेरे को रॉजर्स जी बहुत ही बढ़िया प्रमोशन है असि टीवी इंटरनेट और होम फोन दे स्पेशल पैकेज प्रोवाइड कर दे ओनली इंटरनेट दी भी स्पेशल प्रमोशन है 1500 और 2000 दी स्पीड वाले रॉजर्स इंटरनेट बहुत चीप प्राइस पर दिला देंगे
0: ठीक है
1: मेरे को रॉजर्स दी सेल फोन दे भी बहुत अमेजिंग ऑफर है कैनेडा यूएस अनलिमिटेड कॉलिंग मिले दी आईफोन और सैमसंग भी स्पेशल प्राइस पर अवेलेबल है प्लीज कॉल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन नंबर है 6478648000 असि 18 साल से रॉजर्स दे कॉर्पोरेट इम्पलाई हाँ थोड़ा अकाउंट और एड्रेस चेक करके बहुत बढ़िया प्रमोशन दिला देंगे नंबर अगेन 6478648000
0: नंबर एक बार वकार खान साहब दोबारा दे प्लीज
1: जी अर्जी जी नंबर है 6478648000 6478648000

बड़े सॉन्ग मैन, सुंदर सपनों की है। बड़ा प्यारा गीत है। किसी ने पता है कि साल मूवी आई सी है? ते मूवी का नाम ही नहीं किसी ने पता होना। सुनियो ध्यान।

0: गीत अब कहाँ मिलते हैं सुनने के लिए, ऐसे गीत तो बस गीतों में रह गए हैं। What a music man, I love it।
1: पथरीली राहों में
0: आ सुन लो ते अल्लाह, पथरीली राहों में कहंदा जिद्दां दा मर्जी समा आवे बस तेरे नाल ही जिंदगी बतीत करनी है। What a lyrics man।

0: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टावला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं तुहाडा अज्ज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा और उम्मीद करते हैं कि तुहाडा वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरिया होगा। सब तो पहला अज छतरी छाता रिपोर्ट हाजिर है। 6:01 से सूरज आया, शाम नू 8:49 चले जाना। मामा चांसियो अज शाम नू 8 आएगा, कल नू 3:41 सवेरे चले जाना। अज का तापमान 27 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, थंडरस्टॉर्म झखड़ झोले, बारिश पाएगी। कल नू सारा दिन बदलवाई, थंडरस्टॉर्म झखड़ झोले, तापमान 26 डिग्री। बुधवार नू 28 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड। थर्सडे नू 29 डिग्री, मोस्टली सनी रहेगा। फ्राइडे नू 28 डिग्री, सैटरडे नू 29 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, छतरी पैण दे आसार नजर आउंदे ने। मामा चांसियो की गल की है, अज दे जमाने च भी लोग कुंडलियां च पए होए आ, राहु केतु दे चक्कर च पए आ। शनिवार आ जी, शनि इधर नू गया ते शनि उधर नू गया, ते आह जिहड़ा फ्यूनरल होम तो पानी लै गया, उह घरे फलाने खूंजे च रखो, तुहाडी तकदीर बदल जाएगी। ओ तकदीर एदां नहीं बदलदी मित्रो, तकदीर मेहनत नाल बदलदी आ, इमानदारी नाल बदलदी आ। ए लोग जिहड़े इस तरह के कम करदे आ, जां सानू कहिंदे हां भी तेरी जन्म तरीक की आ, इन्नी जम्मिया कदों सी, इन्ने नू जी तेरा इलाका किहड़ा, इलाकों की पे इलाका का धरती है। पर साढ़े बेफूल लोग अजे भी नहीं हटते, बच के रहो इन्होंने लोगों को। खैर टिक्का जंक्शन का सुनेहा। टिक्का जंक्शन 6474294040 केटरिंग करवानी है छोटी वे फंक्शन, नो प्रॉब्लम। 6474294040 लाइव कुकिंग करवानी है करे, नो प्रॉब्लम। 6474294040 तुसी इन्हां दे बैंकुट हॉल या लॉज में छोटी वड्डी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम। 6474294040 647-429-4040। मॉर्गेज सोल्यूशन दे गुरप्रीत समरा जी, तुहाडे मकान दी रिन्यूअल आ रही है, तुसी अपनी मॉर्गेज बी सी लैंडर तो हटा के ए लैंडर नाल करवानी है और इंटरेस्ट रेट ते भी बचत करनी है। कॉल 905-460-9099। प्री अप्रूवल भी करवा के दिंदे हन ताकि कॉन्फिडेंस नाल मकान लै सकदे हो। 80-90 हज़ार बेस नूं बनाउण लई चाहीदे ने, मकान लैण वेले इसका भी अरेंजमेंट किया जाता है। गुरप्रीत समरा नाल बैठ के डिस्कस करो। 2155 B स्टील्स एवन्यू नियर टॉप रूम यूनिट 32, 905-460-9099, 905-460-9099, 409-99 इना नंबर है। सजना, रब को मंगना छो, मेहनत करो, रब आपे देगा। जिस दिन रब मंगण ना आखरी सह भी लै जाएगा।
1: हर कोई चाहता है कि ओदा घर सब तो सोना दिखे, ते जे तुसी भी यही चाहते हो तां मिलो ट्रिपल ए लैंडस्केपिंग कंपनी लिमिटेड वालेयां नूं। जे अपने घर दे बैकयार्ड नूं बनाउणा चाहुंदे हो होर भी खूबसूरत, या फिर करवाउणा चाहुंदे हो लैंडस्केपिंग या इंटरलॉकिंग, सारा काम टॉप दा करांगे अते सब तो बेस्ट रेट्स भी देणगे। ट्रिपल ए लैंडस्केपिंग, कॉल 647-784-1213।
2: पूरे 40 साल हो गए थे अपने ब्याह नूं, फिर कित्थे सेलिब्रेट करन दा इरादा है?
3: मेरी मन्नो आपा पिंड ना चलिए।
2: धर्म नाल आ ता तू मेरे मन दी गल ही कहती है, पर इन्नी छेती टिकटां कित्थों मिलणगियां?
3: गिल इंटरनेशनल ट्रैवल तो अपने साथ वर्गा ही साथ है उन्हां दा, अपने क्लाइंट्स दे नाल पिछले 40 सालां तो।
2: 40 सालां तो बेदाग सर्विस,
4: गिल इंटरनेशनल ट्रैवल।
3: क्वालिटी सर्विस, वधिया रेट्स ते बेस्ट डीलिंग है उन्हां दी पहचान। इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया दे किसी भी कोने च करना होए ट्रैवल,
4: सर्विंग कनाडा नेशनवाइड।
3: 9056718400 or 905-796-8800 or visit giltravels.ca।
0: पंजाबी बाय नेचर ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਕਨ ਇਵੈਂਟ ਸਪੇਸ ਇਨ ਮਿਸਾਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਲੀਗੈਂਟ

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे

0: சென்டர் விக்கே, சாக்கருக்கு பட்டி, ஃபீல்ட் ஹாக்கி, வாலிபால், பாஸ்கெட் பால், வெயிட் லிப்டிங், கத்துக்கா. பத்திரே ஜான்காரிலை sikhgamescanada.ca ஜா கால் கரோ 647-807-0007. இனா கேம்ஸ் தி என்ட்ரி பில்குல் முஃப்த் ஹை.
1: शानदार बैंकुट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ. टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM. ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ. टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040. टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन.
2: रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
3: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने.
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा.
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी.
3: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है. हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते.
4: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca.
5: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sunu chahide ne. Jan to see visa services, si pal de vecho, puri family vacation upper jaan di soch ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna waji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200. Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
6: Vimala village la village padde piyuch jant padda. Vimala village la village, Vimala village la village padde. Sasrikal ji, main ha tode apni Shipra Goyal te tusi sare sun rahe ho Watno Dur Radio Sukhi Nijjar ji de naal.
0: Listen live Watno Dur Radio with
7: जी दोस्तों, एक बार फिर तुहाडा स्वागत है वतनों दूर दे विच. और अज दस दिए जिवें पहला दस के गया सी कि साडी टीम जिहड़ी रियल स्टेट दा किता भी करदी है इत्थे भी और इंडिया दे विच भी. इत्थे बैठे बिठाए भी तुसीं जिहड़ी पंजाब दे विच कोई प्रॉपर्टी बेचनी है जां फिर खरीदनी है, कोई भी तुहानूं हैल्प चाहीदी इत्थों बैठे बिठाए साडी टीम कर सकती है. 416-881-7070 ते कॉल कर लो. किसे तरह दे भी तुहानूं कोई मॉर्गेज चाहीदी है, कोई लोन चाहीदा, कोई सैकंड मॉर्गेज चाहीदी है, तद भी तुसीं इसे नंबर दे उत्ते गल कर लैणी है, तुहाडी हैल्प हो जाएगी. 416-881-7070 ते. सो किरण जी आ गए ने, मनप्रीत थोड़ी पुछदे इन्हां नूं हाल चाल. जी आयां नूं मनप्रीत जी, पसीने होए पे ने लोग.
8: सुखी जी, कोई दो राय नी, सचमुच मौसम इना ज्यादा गर्म है, सगो पिछला जेड़ा वीक सी ना काफी ठंडा रहा, मीह पै गया सी किते किते, पंजाब च मीह पई ही गया ते ओदे नाल कई जगह ते बदल वाली रही. ता सच पुछो ता मैं ता 3-4 दिन बिना एसी तो सुती, ते इन्ना मजा आया, मतलब एसी आले कमरे च जान नू दिल ही नहीं सी करदा. ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਕਰਾਈ ਪਈ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ. ਵਾਕਈ ਪਸੀਨਿਓ ਪਸੀਨੀ, ਕੂਲਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਏਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ. ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਰਹੂਗਾ. 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਸੋ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ. ਬਸ ਦੁਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਦਲੂਗਾ, ਠੰਡਾ ਹੋਊਗਾ.
7: ਜੀ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ?

0: आज खुश बात हो गई था।
1: ओ ता होना ही है जो तक नो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे तई नकदा बन दई है।
2: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
1: डॉन
3: को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है,
1: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां ढिलोवीडियो.com। होर कोई सेवा?
4: यारों के साथ जशन या फैमिली के साथ करना हो जशन, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
5: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नाइग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नाइग्रा फॉल्स, कॉल 905-358-0864
4: 905-358-0864 ढाबा ऑन द फॉल्स।
6: मित्रां दे जंक्शन ते
5: हो केड़े जंक्शन ते
7: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते
6: रात लगियां महफलां रे
7: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनिया खुशियां दे जश्न मनाओ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM टू 6 PM ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040

0: 사람 사람이다. 나도 어떤 소식도 많이 받아주는데 며칠 다해가 애기 모델도 나한테 사는 거다. 나도 그런 것 같은 날라마다 오면 미소 미소 해가 내가 만난 듯이 내가 사람을 그렇게 하세요. 앞으로도 그렇게 믿어라도 그것도 못한 말이 내가 그런 사람이 그렇게 미소를 그렇게 나빠져라 그런 그런 그런 사람들이 그냥 돌아가는 거라.
1: जी राजवीर जी मेरे वालों प्यार भरे सत श्री अकाल। हफ्ते का पहला दिन सोमवार की शुरुआत हो चुकी है। सारे आपो अपने कामों में लोग मस्त होंगे। उम्मीद करते हैं कि तुहाडा वीकेंड बड़ा वधिया लंघा होगा और तुसी अपने परिवारों के विच बड़िया खुशियां माणियां होणगियां। तो दोबारा फिर कामकारां विच बिजी हो चुके होंगे। तुहाडे इस बिजी सोमवार नूं असीं बड़ा ही खुशियां भरिया बनाउण की कोशिश करांगे। इक घंटा तुहाडा ते मेरा साथ बना रहेगा।
2: जी बिल्कुल जी लो एक बड़ा ही प्यारा गीत तो रूबरू।

0: लगाओ।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
0: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नू सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नू क्लिक करो, उत्थे तुसी सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7।